भाषा। यस प्रभु, तू ही भाषा है प्रभु, तू ही है प्रभु, तू ही हमारा सहारा है, हमारा भरोसा तुझ पर है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दे को नीचे आती है।

प्रभु तेरे नाम रमन से हमको मिली ये शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। यस प्रभु, हमको शांति मिली है प्रभु तेरे उदार मन से। हम याद तुझे करते अपने जीवन भर में प्रभु, सुनकर तेरा नाम हम करते प्रणाम प्रभु, तेरी वंदना करते। यस प्रभु, तूने हमारे पापों के लिए खून बहाया, तू हमारा दाता है प्रभु, तू हमारा राजा है प्रभु। धन्यवाद यस प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते प्रभु। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जी, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन

हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के संग हम जाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे, जब तक मुझ में सांस रहेगी। यीशु के गुण गाएंगे, यीशु के गुण गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन यीशु को। यीशु की स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे, जब तक मुझ में सांस रहेगी। यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तो तेरा नाम को हम धन्यवाद करते। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते तेरे नाम को, महिमा करते प्रभु, कि तू अद्भुत है, तू पराक्रमी है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू स्तुति के योग्य, तू आराधना के योग्य, तू महिमा के योग्य, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को स्तुति करते, यीशु तेरी दया से। हम्म,

येशू तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद येशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़े रखता, मेरे सारे दुख दर्द

शालोम तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, योनिसी तेरा धन्यवाद, यस प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तो योहानिसी हमें जय देने वाला, तेरी दया करुणा हमेशा की प्रभु, यस प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीत, तो आनंद से भर देने वाला, यस प्रभु तो आनंद से भर देता है प्रभु, परमेश्वर आनंद से घेर रखे, ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पार होगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे, जो तुमने खोया उसका दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसे दुगना पाओगे, परमेश्वर तुझे आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के उच्च स्थान तेरा स्वागत करे, स्वर्गीय संपत्ति

तुमने खोया उसे दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसे दुगना पाओगे। तुझे जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे, सफलता को रोकने वाली टूटेगी सारी जंजीरें। तुझे जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे, सफलता को रोकने वाली आज टूटेगी सारी जंजीरें। तेरे दर्शन सारे सब सच हो जाएंगे, लाभदायक दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे। तेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे, सफलता को रोकने वाली टूटेगी सारी जंजीरें।

दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे, जो तुमने खोया उसे दुगना पाओगे, जो तुमने खोया उसे दुगना पाओगे। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर होगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। सूर्य धार्मिकता का तुझ पर उदय होगा, पंखों तले यीशु चंगाई देगा। सूर्य धार्मिकता का तुझ पर उदय होगा, पंखों तले यीशु चंगाई देगा। ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर होगे, इंतजार के दिनों का प्रतिफल तुम पाओगे। ऊंची उड़ा दुश्मन पैरों के नीचे राख बन जाएंगे, दुष्ट जितने सारे हैं बिजली समान गिर जाएंगे, दुश्मन पैरों के नीचे राख बन जाएंगे, दुष्ट जितने सारे हैं बिजली समान।